0: कृषि रेडियो समय संकेत।
1: अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको ठिक एक बजेको छ।
2: नारायण खेती गरौ है।

0: कृषि रेडियो समय संकेत।
1: अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको ठिक 3 बजेको छ।
2: नारायण खेती गरौ है।

0: कृषि रेडियो समय संकेत।
1: अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडीमा साँझको ठिक 5 बजेको छ।
2: नारायण खेती गरौ है।

0: कृषि रेडियो समय संकेत।
1: अहिले हाम्रो स्टुडियो घडीमा साँझको ठिक 6 बजेको छ।
2: नारायण खेती गरौ है।